दाव मिला रही क्या? पीछे नहीं हटूंगा वही, मिला को रख डालूंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह मेरी मदद कर अल्लाह, मैं कुत्ती को छोड़ूंगा नहीं मैं अल्लाह।

सबसे पहले तो शुक्रिया सेकंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है। थैंक्स अ लॉट, वी मिस यू। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: दिल से सुनो, दिल से सुनाओ, रेडियो मन भावन 90.8 FM, ऑलवेज हैड टची।
1: शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें।

0: गेलंय रेडिओ मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग.
1: सारे गामा कारमा डिजिटल ऑडियो प्लेयर. इस तोहफे में है 5,000 सुनहरे गाने और कुछ यादें.

0: शिक्षण, माहिती, ज्ञान, मनोरंजनाने सजलेले सदाबहार कार्यक्रम ऐकायला विसरू नका. रेडिओ मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग.
1: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें.

दबाव दिला रही क्या? पीछे नहीं हटूंगा वही मिला को रख डालूंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह मेरी मदद कर। अल्लाह मैं कुत्ती को छोड़ूंगा नहीं। मैं अल्लाह

सबसे पहले तो शुक्रिया सेकंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है। थैंक्स अ लॉट, वी मिस यू। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: शिक्षण, माहिती, ज्ञान, मनोरंजनाने सजलेले सदाबहार कार्यक्रम ऐकायला विसरू नका. रेडिओ मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग.
1: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें.
2: ओ सोनिए मां छुट्टियां.

अगर तुम ना होते। संगीतकार आर.डी. बर्मन, गीतकार गुलशन बावरे। हमें और जीने की चाहत ना होती।

0: क्या कर रहा हूँ?
1: भैया छोड़ो ना।
0: क्यों छोड़ूं?
1: प्लीज समझो ना।
0: क्या समझूं?
1: वो लोग देख रहे हैं।
0: अरे तो देखने दो और जलेंगे।
1: अच्छा तो ये बात है, तो मैं और पास आऊँ?
0: आओ ना।

निराश ना हो बेटा, मैं तुमसे दूर हूँ मगर मेरी आत्मा तुम्हारे साथ है। उठो बेटा, गाओ, यह है ललित गौर बदन कुसुमाभरण प्रसन्न मुख मुस्काय कमल पत्र समनेत्र से ललिता ललित सुहास।

यह गौड़ मल्हार, गौड़ सारंग मल्हार दोनों मिल मिले छेड़े तार। बोलत है बरखाती रिमझिम गाओ गौड़ मल्हार।

यह है पुरिया, रत्न मुकुट सर छत्र और चामर मुख में पान, राजा रूप कल्याण की पुरिया जाति जान।

यह भाग्यश्री विद्वानों की वाणी में बसकर विजय दिला रक्त वर्ण वागीश्वरी मंद मंद निकदार।

0: वाह उस्ताद, वाह उस्ताद, क्या जान लेवा तान है, वाह जियो।
1: मालूम होता है कि बादल गरजे,
0: वाह उस्ताद क्या तादानी है।
1: वाह उस्ताद वाह, हमारे डांस फैन तो आप हैं, जिनकी खांसी में भी आना।

दुख है मुझे ये तो किसी ने भी न जाना, खामोश खामोश मोहब्बत लिए फिरता ही रहा हूँ मैं जिंदगी में।

0: no se parra.
1: रेडियो वन भावन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टचिंग. हाय मी आरजे स्वरा आपण ट्यून केले रेडियो वन भावन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टचिंग.